0: जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम। अमन का पैगाम। अमन का पैगाम।
1: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4।
2: It's 8 o'clock.
3: It's 8 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: बाहर का मुंगवरता गड्डी रूप मैदान के संग पसंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग गद्दड़ दंग
1: दद्दड़ दंग दद्दड़ दंग दद्दड़ दंग रोजाना मुंगा खबरें
0: हवाली
1: सरा खबरी हवाली
0: खबरी
1: चूंकी लगा टोल प्रोडक्ट से कम सिस्टम आगा बराबर शिवे में बच्चे कम देता पेट्रोल प्रोडक्ट माने खबर है तरीकी

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

वेलकम खुश आमदीद सराकी प्रोग्राम में एक दफा बात खुश आमदीद मेरे सोने सजनो प्रोग्राम सुनने जिन्हें मेरे भिरावा तौले की फरमाइश की अफसोस और अफसोस ना लगेंदा कि साड़ी टाइम की कमी की वजह कारण लेकिन बड़ी कोशिश की है कि जिन्हें बड़ी फरमाइश की तौले की तौले का गाना असर ला दिता है इनशाला मेरे पश्तो वाले भिरा जे रहे उन्होंने ही कदर करे सो नसीमा अवान साहब शेख के घर कर बै कें कॉल की मेरे भाई ने पश्तून आई तो उन्होंने पश्तो सौंग ही लासूँ उन्होंने मुहब्बत प्यार अखियां अगू रखे सूँ दोस्तों ही कॉल आँदी पे देख मेरा मीठा भिरा कौन है तो कितु है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एफएम रेडियो और ज़बरदस्त अला दे कदरों का खुशहाल उसे अला दे आबाद का हरा युवा दे समा का चौके जी माम खोज वरोरा। हेलो शेख उतार न बरकतुल्ला शेख उतार न बरकतुल्ला लख शेख उतार न माता कालूना खोरा जी बरकतुल्ला साहब ता दे खुदा खुशहाल हो सती टोल शेख उतार गुली गुलजार की जी। लख जी तासो पैन को बंदे पेजो अल्लाह दे कदरों का अल्लाह दे कदरों का चरंग शय बराबर है दा मुझ प्रोग्राम स्वार पवरा जी तासो लख आर वो पपेजो अल्लाह दे कदरों का जिंदाबाद रब दे खुशहाल का चरंग जी शयो शेख उतार मुशद जी जी बिल्कुल बस दा तासो पश्तो वाले यो सॉन्ग बद तासो पर नाम बकौचे दा पश्तनो रोना माता काल कई इंशाल्लाह दा तासो कदर मीना मोहब्बत पदवाड़ो स्तरगो दाद कर चई दरना गानो के उरका यारा दाद कली खड़े खड़े कुचे हेर न के दाद कली खड़े कुचे हेर न के ठीक सो चाहता दुआ सलाम और कई जार दे सो अल्लाह दे कदरों का वालेकुम सलाम सलामुना दे वरसे दल दाद पश्तो वाला मीन मेहरबानी जिंदाबाद रब दे खुशहाल का दोस्तों दोस्तानों दाद मीना मोहब्बत मुशरा दे सराय की प्रोग्राम सरा मीना वाल दी पश्तनो मीना वाल दी अल्लाह दे दो कदरों की गोरू लख जखों से लशों दे दगो कदर इज्जत बो कुछ तक पश्तनो वरुणा माँ कदर कई कोशिश मोकड़ा चे टाइम हाँ कम दे और द पश्तो गाना आ पश्तो सॉन्ग पद दगो नाम बांधे ऊकू वारो द पश्तो गुलजार आलम दा या चौकम द पश्तो सॉन्ग दे तासो लख दासदा पश्तो वाला सॉन्ग को जी मिंदसला बिल्कुल मिंदसला शाह फारूक और सितारा यूनस दा जबरदस्त दो गाना दा शमजदार अक्षलई आवाजुना शमजदार सॉन्ग शमजदार मौसीकी आ शमजदार माहौल और शमजदार माँ मिलमाना पश्तनच माता कालूना कड़ी दी दा सॉन्ग दा गाना पागेन पागो नाम बांधे रजच गढ़ आरू

0: Geht wohl runter.
1: You are listening to Radio Amon Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
0: It's 2 o'clock.
3: It's 2 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amon. Jhan Rang Amon.
4: Welcome to Radio Amon 88.4.
1: You are listening to Radio Amon Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
5: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू। आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
6: चाहतों के रंग, अमन के संग, अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
7: बीमारी हक दे अवेलाजी सुनत अमल दे, अवेलाजी सुनत अमल दे।
8: ओस कचेरे तासु तदासे अमराज भी चितासु वरना ढेर परेशान आयो और ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो, ढेर गर्जिदली कड़ी दली यो।
7: नो बिल्कुल मायूस के गई माँ, मायूस के गई माँ। अल शिफा दवा खाना शवाल मार्केट टांग सिटी ता तशरीफ रावड़े और द हकीम मौलाना नूरुल हुदा सेवना पल इलाज तरला सकवले शे।
8: और दोनों मालूमातों दे पारा पदक नंबर काल कवले शे
7: 0319-55-23-404।

हाँ जी बिल्कुल नन प्रोग्राम शुक्र हाँ डे स्पेशल प्रोग्राम दिवस है दादा जी बिल्कुल तो पता दो माशाल्लाह जी कला हाँ स्टूडियो तो बिल्कुल रोशी प्रोग्राम के बिल्कुल मिस्टर मौजूद भी नो प्रोग्राम मजीद नोन हॉवर्ड सराक्षल बिल्कुल खबरों को नन हाँ प्रोग्राम के बिल्कुल ध्वस तरुण चुकम दिखे ना प्रोग्राम के बिल्कुल रोगली देश में कश्मीर के पाकिस्तान प्रोग्राम के और सरा एमएसडी चुकम दा हुआ आसे हाँ मिस्टर प्रोग्राम के मौजूद भी बिल्कुल प्रोग्राम के बेंच लगे सर लगी जी प्रोग्राम के चुकम ध्वस तरुण दिखे ना आगा हाँ बिल्कुल प्रोग्राम के सरा मौजूद ही तो बिल्कुल रसी फॉलश की शान दे दासे सो मिनटे बाहर ठीक सर चकला दे बिल्कुल रेडी जी जी ना बिल्कुल प्रोग्राम के बिल्कुल गपशप लगी जी तो हाँ कॉल कवल दे प्रोग्राम की शिरकत कवल कॉल कवल डायल कवल 03228898999 जी बिल्कुल 03229898999 बने कॉल कवल प्रोग्राम के बिल्कुल बरहराज शिरकत कवल मैसेज हाँ कवल और दिन अलावा कॉल हाँ कवल हाँ जी बिल्कुल जुकम दुआ सरोन दी अगर सर मौजूद हो गए नमक एम एस डी पत्र फिर छी प्रोग्राम की उल्लश की शांति एम एस डी सर जुकम दी गप शो वाला गिर जी हाँ जी एम एस डी सर मौजूद है और एम एस डी तरह इश्मा कैसे पाकिस्तान प्रोग्राम की हर गली अस्सलाम वालेकुम जी जी जी अच्छा जी बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ठीक सी

0: You are listening to Radio Amon Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91 DA Khan, Radio Pegram 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Tanga. Aap teen radio station aur ek awaaz, aur ye awaaz hai khoobsurti ki, ye awaaz hai husn ki, ye awaaz hai shifa ki, ye awaaz hai health ki. Aap teenon station se, teenon station par sunne wale tamam girls and boys, uncle and aunties, chacha and chachis, mom and mommies, dada and dadi, zan, nana and nannies, of course sabhi sunne walon ko Khalil Tabish Shahwan ka सलाम, ढेर सारी मोहब्बतें, ढेर सारी नेक तमन्नाएं आप सभी के नाम। जी जनाब, हर रोज की तरह आप लोगों के लिए केसर नजर पाकिस्तान का टी टाइम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। और चार बजते ही जनाब, जैसे ही चाय का वक्त होता है, चाय पीने का वक्त आता है, तो जनाब केसर आप लोगों के लिए आपके पसंदीदा टाइम के अंदर ये पसंदीदा शो लेकर आता है जिसका नाम है केसर टी टाइम शो। तो जनाब उम्मीद यही करते हैं कि जनाब इस वक्त चाय शाय जो है वो आपकी तैयार हो चुकी होगी, पक चुकी होगी, या फिर तैयार होने वाली होगी, पकने वाली होगी। अब कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जनाब जो कि अपनी चाय को नोश कर चुके होंगे। तो जो जनाब जो नोश कर चुके हैं या हमारे शो के बाद जो है चाय को नोश करेंगे, तो भाई उनकी चाय के अंदर वो मिठास, वो मजा नहीं होगा जो आपको इस प्रोग्राम के साथ सुनते हुए चाय का मजा आता है। तो जनाब चाय का मजा लीजिए, ढेर सारी चाय पीजिएगा। ढेर सारी क्या मतलब होता है, चाय कितनी ज्यादा पी सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से कि इस दुनिया के अंदर जो है 80-90% लोग जो है एक वक्त के अंदर एक कप चाय ही पीते हैं, ठीक है जनाब। और ये कुछ 10-15% है जो दूसरा कप मंगवा लेते हैं चाय का। वैसे शरबत का आप देखते हैं कि शरबत अक्सर जो है लोग गर्मी के अंदर दूसरा ग्लास भी मांग लेते हैं या फिर उनको पेश कर दिया जाता है। लेकिन चाय जो है ना, चाय का क्या कहते हैं जनाब, ये असूल नहीं होता कि चाय के लिए दूसरा कप पेश किया जाए। चाय का बस एक ही कप काफी होता है। हाँ जी, चाय जबरदस्त होनी चाहिए, कड़कदार होनी चाहिए, और अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो शुगर फ्री होनी चाहिए, और अगर शुगर का पेशेंट नहीं है तो फिर अच्छे वाली, मीठे वाली, इलायची वाली दूध पत्ती होनी चाहिए। हाँ जनाब, और दूध पत्ती जनाब चाहे टेम्परेचर 50 के ऊपर भी चला जाए जनाब, हाँ जनाब लेटी किस्म की चाय जो होती है और उसके अंदर इलायची भी शामिल हो तो फिर क्या ही कहने हैं जनाब। फिर तो अगर आपको तो ऐसी चाय अगर मुयस्सर है या मिल चुकी है तो बड़े किस्मत वाले हैं, क्योंकि अक्सर चाय सादा सुधी लोग पी रहे होते हैं। हाँ जनाब, और चाय के ऊपर अगर थोड़ी सी मलाई हो जिसको हम मलाई कहते हैं या क्रीम, वो जो दूध के ऊपर आती है, चाहे घर के अंदर आप जैसे ही दूध को उबालते हैं और उबाला आने के बाद जब जो है क्या कहते हैं जनाब ऊपर मलाई आती है, वो अगर चाय के साथ हो तो फिर तो मजा ही और होता है। अब पता नहीं आप इस किस्म की चाय पीते हैं या फिर आप सादी सूदी चाय पीते हैं। एनी हाउ, चाय तो चाय होती है, और कहते हैं कि जनाब धोखे के बाद चाय ही वो वह चीज है जो आपकी आंखें खोलती है। तो जनाब अपनी आंखें खोल लीजिए, वेक अप दे रहा है इस्माइल खान, वेक अप पहाड़पुर एंड वेक अप टांग वालों। जनाब चाय के पहले घूंट के साथ ही जनाब बिस्मिल्लाह इस प्रोग्राम की। और जनाब कहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर, वो कहते हैं ना, किसी के माथे के ऊपर नहीं लिखा होता कि कोई शरीफ है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई धोखेबाज है, कोई दो नंबरा है, क्या है, कुछ भी नहीं लिखा होता किसी के भी चेहरे के ऊपर। अल्लाह ताला का ये हर इंसानियत के ऊपर एक करम है कि किसी के भी माथे के ऊपर, किसी के भी चेहरे के ऊपर ये चीज नहीं लिखी होती कि कोई कैसा है। बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे लोगों को जिनकी लुक जो है देखने में जो थोड़े से मजहबी लगते हैं, दाढ़ी वगैरह हो, अमामा पहना हुआ हो, यानी कि उनकी शक्ल सूरत को देखकर ऐसा लगता है कि यार ये चूंकि दीन के साथ जुड़ा हुआ बंदा है तो जाहरी बात है ये अच्छा बंदा होगा, अच्छा इंसान होगा। तो लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि भाई कोई ऐसी शक्ल सूरत वाला बंदा भी आपको जो है, कहीं ना कहीं सारे बंदे ऐसे नहीं है जो भी इस्लामी रूप धारता है तो वो उसकी तब्दीली अंदर से तब्दीली होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी तब्दीली होती है जब आप बैरूनी तौर के ऊपर कोई लिबादा ओढ़ते हैं, यानी कि शक्ल सूरत ऐसी बनाते हैं मजहब इस्लाम के मुताबिक, दाढ़ी वगैरह रख ली, अमामा वगैरह रख लिया। ये 100% लोग ऐसे नहीं होते, 1-2% कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं
जो इस लिबादे के साथ शक्ल सूरत के साथ भी कहीं ना कहीं आप उनसे धोखा खा जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। ज़ाहरी तौर पर हम ऐसे लोगों को जब देखते हैं दाढ़ी के साथ हों, अमामा के साथ हों, तो तस्बीहात में हो, तो हम यकीन भी करते हैं। अब सियाने क्या कहते हैं कि जब किसी के चेहरे के ऊपर नहीं लिखा हुआ तो क्या करना चाहिए? अलजबरा आप लोगों ने पढ़ी होगी जनाब, पांचवी छठी क्लास में मैथमेटिक्स में हम अलजबरा को पढ़ते थे, तो फर्ज करते थे, फर्ज किया इसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है ना। याद आ गई आपको मैथमेटिक्स में, नलैक तो नहीं रहे या लैक रहे, जो भी आपको याद आ गया। अलजबरा का एक कानून है कि किसी भी चीज की जब कीमत का पता ना हो ना, तो उसकी कीमत पूरी 100 लगाई जाती है कि 100% इसकी है। तो दुनिया का यही असूल है, कहते हैं कि अगर आप किसी को नहीं जानते ना, देखिए टांक वाले मुझे नहीं जानते थे, टांक वालों को मैं नहीं जानता था, अब पहले ही प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम में लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा ये किस तरह बनना है जी, ये बातें किस तरह करता है। यानी कि आप मुझे अभी जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं, डेरा वाले मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, पहाड़पुर वाले अच्छे तरीके से जानते हैं कौन बंदा है, किस तरीके का बंदा है, क्या मिजाज है इसका, टांक वाले मुझे जानने की कोशिश कर रहे होंगे, मैं भी उनको जानने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन आपका मजहब दीन भी यही कहता है कि आप किसी के बारे में भी कभी भी नेगेटिव थिंकिंग ना रखें, हमेशा अच्छा गुमान रखिए। तो बिल्कुल जी, साइंस यही कहती है, अलजबरा यही कहता है कि जब किसी का के बारे में पता ना हो ना कि ये क्या चीज है, ठीक है जनाब, तो उसको फर्ज करते हैं जनाब अलजबरा की तरह कि इसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है जनाब, 100% उसको कंसिडर करते हैं कि ये 100 रुपए का बंदा है, 100% उसको वैल्यू देते हैं। यानी कि 100% आप किसी को जब वैल्यू देते हैं तो 100% आप उसे नंबर दे रहे होते हैं। लेकिन अलजबरा का ये असूल है कि जिसकी कीमत का अंदाजा ना हो उसको हमेशा फर्ज करें, लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है वो असली कीमत अपनी जो है वो खुद ही बता देता है। यानी कि जिस भी बंदे के साथ आप रहेंगे ना, आप उसे पहली नजर में 50 नंबर या 50 नंबर का बंदा, फराडिया बंदा या इस तरह का कोई भी खिताब ना दें, बल्कि उसको 100% वैल्यू देकर उसके साथ वक्त गुजारें। आप यकीन कीजिए आपको वक्त के अंदर, आपको 1 महीने के अंदर पता चल जाएगा कि जिसको आपने 100% वैल्यू दी थी वो बेसिकली उसकी औकात है क्या। वक्त के साथ वक्त आपको बता देगा कि जनाब आपने उसे 100% वैल्यू दी लेकिन वो 100% के काबिल था या नहीं। मुझे कहते हैं खलील ताबे जवान, ये है केसन नेट पाकिस्तान का केसन टी टाइम, चाय के कप के साथ सारा प्रोग्राम एंजॉय करने लगे हैं। और आज तो पता नहीं लोग इंतजार में बैठे हुए थे कि मेरे आते ही हमारी सिग्नेचर ट्रैक चलते ही लोगों ने SMS करना शुरू कर दिया। तो जनाब आप भी SMS कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर सेव कर लीजिएगा 0344-936-3366।

जी जनाब, किशन राज पाकिस्तान की जो कहानी है ना, बेसिकली किशन की कंपनी जिस मुद्दे के गिर्द घूमती है, वो आपके ये शो करने से कोई 5 मिनट पहले ना मुझे हेल्पलाइन के ऊपर कॉल आई कि भाई ये आपकी आयल और शैम्पू की जोड़ी किस तरह है। तो मैंने उनको रेट बताया, तो उन्होंने कहा मैंने बड़ी तारीफ सुनी है इसकी, ये आप ना 4 पेयर भेज दें, 4 जोड़ियां भेज दें, ठीक है, इसकी 4 जोड़ियां आप भिजवा दें। ये डेर असमल खान में कोई बंदे थे, आई थिंक क्या नाम था उनका। उन्होंने मुझे कार्ड भी भेजा अपनी दुकान का कि इस नंबर के ऊपर ना ये आप 4 जोड़ियां हमें भिजवा दें। मुगल मोबाइल कैंट मार्केट। अच्छा, तो वो कह रहे थे कि भाई आपकी कंपनी के कोई और भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, यानी कि उनके जहन के अंदर, या तो उन्होंने हमारा प्रोग्राम सुना या किसी से सुना, तो उनके जहन के अंदर एक चीज आ गई कि भाई ये जो कंपनी है ना केसन, ये नेचुरल अज़ा पर मबनी, जो केसन का आप अक्सर जो है पैगाम भी सुन रहे होते हैं, क्या होता है हमारा

0: जी जनाब, तो किसी ने उनको बताया होगा कि भाई केसर नेचुरल पाकिस्तान जो है ये ऑर्गेनिक कंपनी है, तो भाई तो फिर मैंने उनको तस्वीरें भेज दी बहुत सारी केसर की जो प्रोडक्ट्स की होते हैं, तो उन्होंने फेस वॉशेस को मजीद सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये फेस वॉश भिजवा दें। तो केसर की कहानी खूबसूरती की कहानी है, और केसर की जो बेसिकली कहानी है ना वो जुल्फ और रुखसार की कहानी,
1: शिफाही शिफा
0: जुल्फ और रुखसार की कहानी है। और हमारी कंपनी के हर एक प्रोडक्ट आपके जुल्फों और आपके रुखसार को जो है एवन बनाने के लिए,
2: शैम्पू का कमाल
0: के अंदर निखार लाने के लिए है। और जुल्फ और जब हम बात करते हैं जी जुल्फों की, और जब बात करते हैं रुखसार की, तो कहते हैं ना कि तेरी जुल्फों के अंधेरे भी हसीन लगते हैं, तेरी जुल्फों के अंधेरे भी हसीन लगते हैं, तेरे रुखसार के जलवे भी कमर लगते हैं। जुल्फ बिखरी तो घटाओं का गुमा होता है, जुल्फ बिखरे तो घटाओं का गुमा होता है, रुखसार चमके तो सवेरा सा आया होता है। तेरी जुल्फों ने असीरे दिल असीर दिलो जान कर डाला, तेरी जुल्फों ने असीर दिलो जान कर डाला, तेरे रुखसार ने हर दर्द निहां कर डाला। जुल्फों की घनी रात में खो जाए जमाना, जुल्फों की घनी रात में खो जाए जमाना, रुखसार की एक झलक से रोशन हो फसाना। जी
1: हर पल महके,
0: ये कहानियां जब इतनी पोएट्री की गई है जुल्फों के ऊपर, गालों के ऊपर, रुखसार के ऊपर, तो कोई भी जब एक ब्यूटी कॉस्मेटिक कंपनी होती है तो उसकी पूरा फोकस जो होता है ना दो चीजों के ऊपर होता है कि भाई ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो जुल्फों को प्यारा करें, ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो चेहरे को चमकाएं, चेहरे के अंदर फ्रेशनेस लेके आए। अच्छा जी, ये जो फ्रेशनेस का जो आंसर होता है ना स्किन के अंदर, ये गर्मियों के अंदर बड़ा मैटर करता है कि लोगों की जो स्किन होती है ना वो फ्रेशनेस उसके ऊपर खत्म हो जाती है, डलनेस ही आपको नजर आने लगती है। और ये कौन से लोग होते हैं, यकीन कीजिए ये वो लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन भी रहे होंगे, ये वो लोग हैं जो गर्मियों में फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जनाब गर्मी के अंदर। और आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछे ना, किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, तो उसे अगर पूछेंगे ना कि गर्मी में भाई स्किन को रिफ्रेश रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो वो आपको बोलेगा भाई अच्छा सा फेस वॉश ले लो। और जब बात आती है जी अच्छे फेस वॉश की, और तो क्या आपको पता है कि भाई जो एक अच्छा फेस वॉश होता है वो कौन सा फेस वॉश होता है? कभी आपने सोचा इस बात के ऊपर, या कभी आपने ये चीज तलाश करने की कोशिश की है कि जो आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा है या नहीं है?

0: एजुकेशन
1: जी जनाब आपके हर रंग को बेहतर कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो हर स्किन के मुताबिक एक स्पेशल फार्मूला है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कौन सा फेस वॉश लगाना चाहिए, आपकी टू टाइप स्किन है तो आपको क्या लगाना चाहिए, आपकी स्किन नॉर्मल है, आपकी स्किन जो है सेंसिटिव है, आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी संगत सांवली है आपकी रंगत तो आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो जनाब केसन के चार किस्म के फेस वॉश हैं, लेकिन इन सबसे जो खास बात है वो टेस्ट है कि आप कोई फेस वॉश जब यूज करते हैं तो वो कितना प्रीमियम क्वालिटी का है। एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप अपने फेस वॉश को चेक कर सकते हैं कि वो क्वालिटी वाइज कैसा फेस वॉश है। जी जनाब, आप अपने हाथ के ऊपर फेस वॉश लें, अपनी स्किन के ऊपर लें या अपने चेहरे के ऊपर लें, जैसे ही आप फेस वॉश को यूज करेंगे बनाएंगे तो डेफिनेटली झाग बनेगी। ठीक है जनाब, कुछ देर यानी कि एक मिनट, दो मिनट, ढाई मिनट तक अगर आपने मसाज किया और वो झाग खत्म हो गई आपके चेहरे के ऊपर, तो आप लिख के रख लीजिए और उस फेस वॉश को घर से गेट आउट कर दीजिए, क्योंकि जो आप फेस वॉश इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी झाग आपके चेहरे के ऊपर खत्म हो जाए वो फेस वॉश नहीं है, वो शैम्पू बेस है। समझ आ रही है? जो भी फेस वॉश आप यूज करते हैं अगर मुसलसल झाग बनाते हुए अपने चेहरे के ऊपर मसाज करते हुए वो झाग खत्म हो जाए आपके चेहरे के ऊपर तो वो भी फेस वॉश नहीं है, वो आपने शैम्पू बेस यूज कर रहे हैं, तो उसे अवॉइड करें, आपकी स्किन उससे खराब होगी। फेस वॉश कि जिसको चेहरे के ऊपर लगाने से आप 100 दफा भी अगर मसाज करें, ठीक है जनाब, अगर आप 100 दफा भी मसाज करेंगे ना अपने चेहरे के ऊपर और वो झाग खत्म ना हो और झाग खत्म हो सिर्फ पानी डालने से, तो समझ जाएं कि भाई आपके पास प्रीमियम क्वालिटी का फेस वॉश मौजूद है, इसको आप नहीं छोड़ना। जैसे कि केसर नेचुरल पाकिस्तान के पास क्रीमी टेक्सचर फोमिंग फेस वॉश, ठीक है जनाब, आप जैसे निकालेंगे ये फोम टाइप निकलते हैं और प्रीमियम क्वालिटी का, ये सबसे बेहतर क्वालिटी होती है किसी भी फेस वॉश की, जो क्रीमी टेक्सचर प्लस फोमिंग फेस वॉश होता है। जैसे आप ट्यूब को प्रेस करेंगे, ठीक है जनाब, मैं आपको ये टांग वालों से मुखातिब हूँ क्योंकि नए नए हमारे यूजर हैं, तो जब हमने आप विजिट किया था मंसूर जनरल स्टोर के ऊपर तो उन्होंने सबसे पहले ना हमारे ये तीन चीजें निकाली, फेस वॉशेस को खोला और प्रेस करके देखा, कहते हैं यार वाह जबरदस्त, यानी कि आपकी क्वालिटी भी फोमिंग है, A1 चलेंगे, जबरदस्त चलेंगे, लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरा शैम्पू को निकाला तो बड़ी मुश्किल से निकला, कहते हैं गर्मी के अंदर तो जो शैम्पू होते हैं वो पानी बने पड़े होते हैं, तो ये चीजें आपके टांग के अंदर भी पहले टेस्ट हुई हैं, फिर इसके बाद उन्होंने
2: दूर भगाए।
1: जनाब गर्मी के अंदर अगर आप अपनी स्किन को प्यारा रखना चाहते हैं, गारंटी हम देते हैं आपको प्रोडक्ट ये वाले दो यूज करें। अगर आपकी स्किन क्लियर नहीं रहती है, आपकी स्किन के ऊपर कोई आपको ऐब नजर आता है कि स्किन आपकी काली हो रही है या कुछ हो रहा है, तो हम आपको पैसे वापस करेंगे। चार में से किसी एक फेस वॉश का इंतखाब करें, मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट हमारी जो है वो प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश है, स्पेशली हमने खवातीन के लिए बनाया है, लेकिन मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको दाने शाने हैं, आपको पिंपल्स निकलते हैं, आप गर्मी के अंदर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा ऑयल रहता है, तो केसन का गो पिंपल इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है जनाब, अगर आपकी रंगत बहुत ज्यादा सांवली है तो केसन ग्लूटा व्हाइट फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर आप मेल हैं, ठीक है जनाब, मर्द हैं और आप अक्सर बाइक के ऊपर रहते हैं, बाहर रहते हैं, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है और आप समझते हैं कि एक नॉर्मल सा फेस वॉश आपके चेहरे को साफ नहीं कर सकता, तो फिर आपने केसन का चारकोल स्क्रब फेस वॉश जो है, चारकोल स्क्रब फेस वॉश स्क्रब दाना के साथ है, आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ये डीप क्लींजिंग करेगा, गहरी सफाई करता है केसन का चारकोल स्क्रब फेस वॉश, और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को बिल्कुल आपके जो पोर्स हैं उनसे निकाल कर फेंक देगा।

0: जी जनाब, केसन का हेयर ऑयल आपके बालों के अंदर नई जान डाल सकता है, और इतनी प्यारी प्रोडक्ट भाई, ब्लेसिंग है वो लोग जिनको अभी से समझ आ चुकी है भाई, अगर बालों की केयर करनी है तो केसन हेयर केयर जोड़ी से ही करनी है, क्योंकि इस जैसी बा कमाल और रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट भाई आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। तो आप जितने जल्दी भाई बालों के प्रॉब्लम के हवाले से इन प्रोडक्ट्स को अपनी स्किन रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो आपको उतने जल्दी फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी मार्केट का सर्वे किया था जब हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, और हमने देखा कि कौन सी कंपनी क्या बना रही है और लोगों के क्या मसाइल हैं। तो हमने तकरीबन कोई 20-25 कंपनीज का डेटा उठाकर उसके बाद देखा कि क्या है, तो रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि पाकिस्तान के अंदर हो ये रहा है कि 7-8 चीजों से ऑयल बनाकर हर कंपनी लोगों को दे रही है। 7-8 चीजें, यानी कि 4 ऑयल और 3 जड़ी बूटियां, 4 ऑयल और 5 जड़ी बूटियां, मैक्सिमम 10 से नीचे की गेम थी, यानी कि कोई भी ऐसा ऑयल नहीं था जिसमें 10 से ज्यादा अज्जा मौजूद हूँ। उसके बाद फिर हमने इंटरनेशनली जो है स्टडीज की कि भाई हमारे मुल्क से बाहर बालों की ट्रीटमेंट के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, तो जनाब हमें इंडिया की बहुत बड़ी स्टोरीज मिली जहां पर बड़ी बड़ी फॉर्मुलेशन और मैक्सिमम 15 से 17 अज़ा पर बने हुए ऑयल बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं इंडिया के अंदर वो जो ऑयल बनाती हैं तकरीबन वो 15, 16, 17, 18, 20 तक अज़ा को ऐड करती हैं। तो हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा ऑयल बनाएंगे जो अभी तक मार्केट में नहीं है, जो इसको खरीदेगा उसको, यानी कि आप अगर कोई भी ऑयल इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ना, किसी भी कंपनी का आप ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं ना वो केसन के अंदर मौजूद है। समझ आ रही है? आप किसी भी कंपनी का कोई भी ऑयल इस वक्त अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जनाब, इस टाइम में वो सारी की सारी चीजें केसन के हेयर ऑयल के अंदर मौजूद है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि एक स्कूल के अंदर एक प्रिंसिपल है और एक टीचर है, ठीक है जनाब। अब जो प्रिंसिपल है ना वो चूंकि टीचर से होके गुजर के ऊपर वाली पोस्ट के ऊपर गया है तो वो टीचर वाला काम भी कर सकता है क्योंकि उसके एक्सपीरियंस है, लेकिन जो टीचर है वो अपने उस लेवल के ऊपर है कि वो प्रिंसिपल वाला काम नहीं कर सकता। ये मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं समझाने का कि जितने भी मार्केट में ऑयल मौजूद है उनके अंदर अंदर जितने भी अज्जा है ना वो केसन के ऑयल के अंदर मौजूद है, लेकिन जो केसन हेयर ऑयल के अंदर अज्जा मौजूद है ना वो दूसरे ऑयल्स के अंदर नहीं है, क्योंकि उनकी कहानी है 8-10 इंग्रेडिएंट, 8-10 उनके अंदर अज्जा होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। आप अपना ऑयल उठाएं और देखें कि कितने अज्जा से बना हुआ है, तो वो मैक्सिमम 8, 7, 9 या 10 से बना होगा, इससे ज्यादा का नहीं बना होगा। लेकिन जब आप केसन का हेयर ऑयल उठाते हैं तो वो 17 अज्जा से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आप किसी भी कंपनी का ऑयल उठा लें उसके सारे अज्जा हमारे ऑयल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो हमारे 7 एक्स्ट्रा अज्जा हैं वो किसी दूसरे ऑयल के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस बात का मकसद क्या है कि जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट छोड़ेंगे जो हमसे कम अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है तो आपको वो सारे फायदे मिलेंगे जो आपको उस ऑयल से मिल रहे थे, लेकिन उससे अलावा एक्स्ट्रा भी आपको फायदे मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर 10 नहीं 8 नहीं 17 अज्जा मौजूद हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि केसन का हेयर ऑयल जनाब आपके बालों के अंदर जान डालने वाला ऑयल है, और इसके साथ शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो जनाब सोने के ऊपर होगा सुहागा, और जब सुहागा होता है तो क्या होता है जी जनाब, ये तो सुनार ही बता सकता है कि जनाब सुहागा जब सोने के ऊपर डालते हैं तो फिर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू? शो इज बेस्ट, आई लाइक केसन कॉस्मेटिक पाकिस्तान। एंड भाई प्लीज ये तो बता दें कि वेट बढ़ाने वाला प्रोडक्ट कब आएगा, प्लीज जरूर जरूर बताओ। इट्स मी सोनिया फ्रॉम टांग। अच्छा जी, इन्होंने 22 तारीख को भी हमें मैसेज किया था और ये उस वक्त भी यही पूछ रही थी कि वेट बढ़ाने वाला, तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि एक तो हमारा वेट कम करने वाली प्रोडक्ट है ना, वेट कम पेट कम, वेट बढ़ाने वाली भी आ रही है, और ये जो प्रोडक्ट होगी हमारी जो वेट बढ़ाने वाली हम लेके आ रहे हैं ये सिर्फ वेट बढ़ाने के लिए नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसके अज्जा आपको फरबा जिस्म करेंगे, आपके जिस्म को मोटा करेंगे, लेकिन वो चर्बी से मोटा नहीं होगा, आपका गोश्त आपके ऊपर आएगा। दूसरा, वो लोग या वो मर्द जो कमजोरी महसूस करते हैं या वो खवातीन जो कमजोरी महसूस करती हैं, ये बेसिकली एनर्जी ड्रिंक होगा, एनर्जी शेक है हमारा, ठीक है जनाब, वो भी उसको इस्तेमाल कर पाएंगे और शेक की तरह होगा बिल्कुल। इंशाल्लाह जून के अंदर ही आपको इंशाल्लाह 15 जून या फिर 20 जून तक इंशाल्लाह आपको ये मिल पाएगा। तो इसे वो तमाम लोग भी इस्तेमाल कर पाएंगे जो अपने अंदर जिस्मानी कमजोरी महसूस करते हैं, जिनको चक्कर आते हैं, जिनको बहुत जल्दी सुस्ती आ जाती है, काम करने को दिल नहीं करता, तो बेसिकली उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, उनके अंदर प्रोटीन की, आयरन की, डिफरेंट विटामिन की कमी होती है, जिसकी वजह से उनको सुस्ती हर वक्त चढ़ जाती है। तो आपकी सुस्तियां खत्म करने जनाब केसन की प्रोडक्ट आ रही है बहुत जल्द, पूरे पाकिस्तान को एक्टिव करेंगे जनाब। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, सब सुनने वालों को सलाम। मोहम्मद अजहर जो है ये पाठपुर से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टांग से अजीजुल्ला खलील भाई, लाजवाब प्रोग्राम है आपका, भाई आप भी लाजवाब हैं जनाब। सलाम भाई, आई एम रोनी, जानते तो होंगे फ्रॉम पहाड़पुर, क्या हाल है, शो बहुत खूबसूरत है। सॉरी भाई मैंने बहुत छुट्टियां की हैं, आई एम द यूजर ऑफ केसन, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, सब लिसनर्स को सलाम जी। रोनी रोनी रोनी रोनी आप एक दफा बोला था कि आप जिम करते हैं, तो भाई आप भी अपने मसल बनाने के लिए ना, ये हमारा जो न्यू फार्मूला आ रहा है, आप एनर्जी ड्रिंक हमारी जो आ रही है उसको लेंगे तो आपके मसल बनेंगे जनाब, और जब आप जिम करेंगे तो वो मसल निकलते हुए बनते हुए भी नजर आएंगे।
1: गो, गो, गो।
0: अच्छा ये क्या नाम है जनाब, कौन है हमारे साथ? अच्छा जी टांक, अच्छा जी यही कहाँ से मैसेज शुरू हो रही है, कहाँ से हो रहे हैं भाई? भाई आप टांग पर क्लियर आवाज है। दिलराज भाई हम तो 3-4-5 तक चाय कप पीते रहते हैं, हैं जी पठान जो है वो आज मैं एक रील देख रहा था, एक बंदे ने पतीला उठाया हुआ था, पतीला, और वो उसको पी रहा था, नीचे लिखा हुआ था डॉक्टर ने कहा है एक ही दफा चाय पीनी है दिन में। जी, चलो जी एक ही दफा पीनी है तो फिर आप देखो, मैं एक ही दफा, आप तो डॉक्टर ने कह दिया ना एक ही दफा, उसने पूरा पतीला बनाकर उसने कहा एक ही दफा पी लेता हूँ। तो ये भी वही है, कहते हैं कि 3-4 तक हम चाय को पीते रहते हैं। जी स्प्रे की कीमत कितनी है, मैंने आपको बता दी, केसन का जो ब्यूटी स्प्रे है वो 200 रुपए उसके ऊपर रिटेल है, आप दुकानदार छोड़े तो आपको 180 का भी दे सकता है, 170 का भी दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ अर्क गुलाब नहीं है, ठीक है जनाब, ये अर्क गुलाब प्लस विटामिन सी प्लस एलम इसके अंदर शामिल किया गया है। और ये कहते हैं कि बिल्कुल भी पसीना नहीं निकलेगा जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जैसे सन ब्लॉक आप यूज करते हैं, सन ब्लॉक जैसे लगाते हैं तो स्वेटिंग हो जाती है, आपके चेहरे के ऊपर पसीना आने लगता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जैसे आप ब्यूटी स्प्रे इस्तेमाल करेंगे हमारा, आपका चेहरा खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा बिल्कुल। जनाब वो ये पूछ रहे हैं कि पसीना आता है कि नहीं, और भाई कह रहे हैं मुझे जवाब दे दे, मैंने आपको बिल्कुल जी पक्का सुक्का जवाब दे दिया, अब आपने सुन भी लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम केटीए भाई, बहुत दिनों के बाद आपका शो सुन रही हूँ, सब सुनने वालों को सलाम। सर मैं ग्लूटा क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा जी लेकिन कहते हैं कि मेरे दाने जो है ना फिर भी निकलते हैं, जैसे कि इनका पहले मसला था, लेकिन रंगत इनकी फेयर हो गई है। कोई सो बता दें इरम शहजादी पाठपुर से, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि अगर आपकी स्किन इस तरह की है कि आपको पिंपल्स निकलते हैं, ये जो हमारा ब्यूटी स्प्रे है क्योंकि इसके अंदर एलम है, एलम फटकड़ी को बोलते हैं, ठीक है जनाब, ये एंटीसेप्टिक होता है, ये जरासीम को खत्म करता है, ये भी दानों को खत्म करता है। जो हमारा गो पिंपल साबुन है वो भी एंटीसेप्टिक है, टी ट्री और जनाब जो है नीम के साथ है, वो भी आप यूज कर सकती हैं, फेस वॉश भी यूज कर सकती हैं। तो अगर आपको ग्लूटावाइट क्रीम जबरदस्त रिजल्ट दे रही है, लेकिन आपका मसला दानों का भी है, दाने निकलते हैं, तो साथ में गो पिंपल से चेहरा धोआ करें, दिन में 2 दफा गो पिंपल से चेहरा धोएं और ब्यूटी स्प्रे का भी इस्तेमाल करें। इरम शहजादी बहुत शुक्रिया। शिराज शाहानी भाई को बहुत बहुत सलाम जी, इनको वेलकम करते हैं, ठीक है जनाब। और हमारे साथ जो है क्या नाम है इनका, सर हसन, नजर हसन जो है वो वेलकम कर रहे हैं शिराज शाहानी को जी, उनको वेलकम हो गया। अस्सलाम वालेकुम खलील बिरा, माशाल्लाह केसन टी टाइम इज वेरी जबरदस्त, अल्लाह आपको और आपकी कंपनी को सदा सलामत रखे, मेरी तरफ से सबको सलाम। आपका भाई असमतुल्ला खान जाफर फ्राम जाफरा वाला जी जनाब, ये हमारे साथ पहाड़पुर से मौजूद हैं, और पहाड़पुर में हर जगह हमारे प्रोडक्ट। ये इस वक्त प्रोग्राम जो है 3 रेडियो स्टेशन से एक साथ आप सुनते हैं। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं और चश्मा पर पहुंच गए हैं तो चश्मा से लेकर आपकी गाड़ी चलती रहेगी, पहाड़पुर से गुजरेगी, डेरा से गुजरेगी, टांग से गुजरेगी, वजीरिस्तान की जंडोला से पर जाएंगे तो वहां पर जाकर केसन की आवाज खत्म होगी। और इस दौरान जो है वो 2-3 घंटे का सफर जो आप तय कर चुके होंगे, तो एट ए टाइम 3 स्टेशन से एक साथ हम आप लोगों के साथ होते हैं। और वजह यह है कि हम केसन का पैगाम हर घर तक पहुंचाना चाहते हैं कि केसन कितनी जबरदस्त कंपनी है जो आपके रुखसार और जुल्फों का इतना ख्याल करती है जितना कि आप भी नहीं करते होंगे। जनाब इतना सोचते हैं हम आपके बारे में और इतने प्रोडक्ट, प्यारे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। और आप प्यारे लगते हैं, और आप प्यारे क्यों ना लगे, जब प्यारा लगना तो आप सबका हक।

0: जनाब, आप सुन रहे हैं हमारा टी टाइम और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है और उन्हें मौका दे रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जनाब क्या हाल है, हमारे फिटे हुए दोस्त तो नहीं आ चुके? हादी आए हुए हमारे साथ। आज मैंने याद ही किया, मैंने कहा यार एक बंदे ने ना शिकायत की थी हादी की, उसके बाद हादी गायब हो गया, अब्दुल हादी। उसने कहा यार ये तो मेरी शिकायतें शुरू हो गई हैं।
1: नहीं बस तुसा शिकायत की थी तो मैं कोई जमाना रुक बनू।
0: असल तो कोई शिकायत नहीं की थी, तोली सही कह शिकायत की थी असल। कोई ऐसी गाल को नहीं सही, तुसा सत बिस्मिल्लाह ते वत बिस्मिल्लाह ते सारी अखियां ते बहुत सारे मत्थे ते बहुत जिता बांधे वे बहुत ठीक है जनाब। पखा ही चले सू तारे उते ठंडा शरबत ही तो मिले सो, वो तो मैं सर इवें तो गाल की थी, वरना कितने लोग इन सही सारा जरा प्रोग्राम सुन दे या कॉलम करें दे, वो तो मैं एक क्या दिन के गप शप ही तो आग छोड़ाई, वरना कोई पाबंदी को नहीं सही। तो सब पूरी जिंदगी सारे प्रोडक्ट ना गिनो, लेकिन सारे प्रोडक्ट प्रोग्राम ही जाओ, सारे महफिल का हिस्सा रहो, तो आपको हमेशा वेलकम आकसो सही।
1: नहीं नहीं खलील भाई मैं को बुरा नहीं लगा को, मैं को ये आई ना बस थोड़ा परे आई ना।
0: अच्छा जी ठीक है, नहीं नहीं कोई नहीं, ऐसा गप की थी सही, कोई नहीं। नहीं नहीं मैं नहीं आखाई, मैं को नहीं पता, एक फीमेल ने मैसेज किया ठीक है
1: सर।
0: ठीक है जी
1: जी सर गरा सवाल टाक बम पर थी ना देखो बी टा गरा सवाल है
0: सही। मैं को तो ए भी पता को नहीं के टांग को लगु जे रहे जंडोले दे नाल केरा इलाका शुरू थी ने ते डबरे दे नाल केरा है, ओ ही कोई फीमेल आई सारी जिने ना कहे कि भाई अब्दुल हादी ने झूठ बोला है 15 मिनट के सफर है, ते मैं खिल के तोरा उना दे मैसेज पढ़ छोड़ाई, तो ऐसी कोई गल को नहीं। मैं को तोरी इलाके दे बारे इतना कोई खास इन्फॉर्मेशन को नहीं कि नाल नाल केरे इलाके, लेकिन सिर्फ हताले तो पता है कि टांग को हताला तकरीबन 20 मिनट लग वेंदे मिनट लग ना मेरे ख्याल इतना फासला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बाकी सारे तरफ बिल्कुल नाराज न थे करो सही, और ऐसा कोई गाल ऐसी नहीं की थी ठीक है अब्दुल हादी। अब्दुल हादी जितने तक प्रोडक्ट की गाल है ना सही, तो प्रोडक्ट हर वो बंदा घिनसी जो जरूरत है, अगर जरूरत को नहीं तो कहने को नहीं घिनवा सकते ठीक है सही।
1: बिल्कुल
0: प्रोडक्ट दी हमेशा तो अहमियत दे सेने है कि भाई इतना अहम प्रोडक्ट है क्या तुम्हारी जरूरत है कि नहीं, हर बंदा ऊले शायद गिनदा होंदा जेले उकु जरूरत होंदी है ठीक है सही। कोई मेरे आके ते करा न गिनसी, खलील दे आके ते करा न गिनसी, वो अपने दिल को देखसी, अपने जेब को देखसी, अपने दिमाग को देखसी कि भाई क्या मैं 700 रुपया लावा शिफायत दर ते मैं जरूरत है कि नहीं, क्या मैं फक्की ते 400 लावा, क्या 150 में हाजमा कंट्रोल ते लावा, 400 फीसवा क्या मैं जरूरत है, तो ये तो तुसा फैसला करना होंदा है कि तुम्हारी जिले जरूरत होनी तुसा वो लिखे। सारे आके थे कोई नहीं गिनदा होंदा ठीक है सही, जेले तुसा देख देवे कि भाई इतनी अहम शय है, ये मेरे वास्ते जरूरी है, तो मेरी जरूरत है ठीक है सही। सारा काम सिर्फ नीड क्रिएट करना होंदा है, असा सिर्फ तो जरूरत बढ़ा के देने कि भाई तुम्हारी ये जरूरत है तो तुसा एक जरूर परचेज करो ठीक है बेरा।
1: बिल्कुल ठीक ठाक
0: चलो ठीक हो गया जनाब, टाइम खत्म है सारे को मेहरबानी। शो तासीर भाई केसन शो को ना सेन, लेकिन थी सकते उन्होंने एक बड़ी कंपनी ज्वाइन की थी, ऑलरेडी प्रोग्राम पहले ही कंपनी का करेंगे वध्यान, लेकिन मेरे नाल तो इवें छुट्टी दी वारा च आ वेंदे ने, ओ आ वेसे ने इंशाल्लाह के बै प्रोग्राम करा सेन इन प्रोग्राम को ना सेन ठीक है सही। थैंक यू जनाब, जबरी माँ जी बहुत शुक्रिया। और ये थे अब्दुल हादी जिनको मैं आज याद कर रहा था, और बिल्कुल भी मैंने ऐसा नहीं कहा था कि जो हमारी चीजें नहीं खरीदते वो हमारे शो में ना, ऐसे इनको मजाक में मैंने बोला था, आपका शो है जनाब आप प्रोग्राम में आए और वही बात है खरीदेंगे तो आप तब जब आपकी जरूरत होगी, मैं फिर जोर दूं या ना दूं, आपने तो खरीदनी है चीज, आप उसे तलाश करेंगे जब आपकी जब कोई प्रोडक्ट आपकी जरूरत होती है तो आप उसको हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं, और यही हमारी सोच है। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम जो आपने सुना रेडियो पैगाम 97.4 टांग से, ग्लोबल एफएम 91 डेरा इस्माइल खान से, और रेडियो अमन 88.4 टांग से, तीनों स्टेशन से एक साथ केसन का पैगाम जो कि मोहब्बत का पैगाम है, शिफा का पैगाम है, सेहत का पैगाम है, खूबसूरती का पैगाम है, शिफा बांट रहे हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, अल्लाह ताला के करम से। और हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होती है कि हम आप तक खालिस प्रोडक्ट पहुंचाते हैं, खालिस प्रोडक्ट नेचुरल प्रोडक्ट जिनमें सबसे ज्यादा बचत आपकी होती है। आज एक दुकानदार से हमारी

0: के ऊपर भी एक गिला होता है। तो जितने भी दुकानदार हैं उनका बेहद शुक्रिया जो कम प्रॉफिट मार्जिन के साथ भी केसन को प्रायोरिटी के ऊपर रखते हैं और इस्तेमाल करते हैं। टाइम खत्म हो गया, मेहरबान इस वक्त कॉल कर रहे हैं पहाड़पुर से।
1: जैसे खिलता हुआ
0: आप टांग के अंदर हर छोटे बड़े दुकान के ऊपर जैसे कि वहां पर मौजूद है मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा के अंदर, वहां पर जाएंगे तो केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। इसके अलावा वकास ट्रेडिंग है, इसके अलावा नसीम जनरल स्टोर बिलाल मार्केट के अंदर है, अरबाब जनरल स्टोर है, इमरान जनरल स्टोर है, इन सबके पास जाए टांग में और केसन के प्रोडक्ट हासिल करें, इस्तेमाल करें और उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनको हम ढेर सारा प्यारा कहते हैं। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बदरसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780, व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।
0: Eighty-eight point

हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, ओके जी। दम इसका वो 0304992538। ठीक सुना जी, ओके जी।

ऐलान कर दे और तय ऑपरेशन नसर नो मोर कर दे अव्वली दिए चिदवा करवाने इसराइल मिजाइल हमलों पर जवाब की शुरू करी शिविदी द ईरान पस दरान इनकलाब तर्जुमान वली दिए चे इसराइल स्ट्रेटेजिक फिजाई अडेबा निशना जुड़ा वली शी ईरान फौज लखवावली शिविदी चे ईरान टोल जंगी यूनिट्स पर मुकम्मल तौर का तैयार दी नोर करवाने वाला पर मुतहरक दी ईरान फौज तर्जमान इसराइल तहबर दरे और कड़े कचेरे इसराइल लेबनान बांधे हमले जारी सती हेते की मौजूद टोल अमरीकी और इसराइल हदफुन बानिशना जुड़वली शी अव सुनांद को दलोब खबरों ना कुमी टीम वन डे कप्तान शीन शाफरीदी टेस्ट टीम लपारा ना मुंतब कौल फैसला शविदा पीसीबी टिंग टिंग शीन शाफरीदी द टेस्ट टीम कैंप के नदी मुंतब करे कुमी वन डे टीम कप्तान शीन शाफरीदी टेस्ट टीम के न शामिल कौल फैसला शविदा पीसीबी दूलस लोबाड़ी टेस्ट ओस्ट लोबाड़ी वन डे और टी ट्वेंटी कैंप लपारा मुंतब कर दी द व्हाइट बॉल टीम कैंप पर रतलून के सितम्बर में अश्ते तलसमी और रेड बॉल लोबाड़ो कैंप रतलून के जुलाई में अश्ते लसमी नेटी पूरी हुई वॉलीबॉल हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बला मुकबला सदर मुंतब की दलो बांदे तमीम इकबाल तमुबरकी वर करीदा मोहसिन नकवी अखबाल पैगाम की तमीम इकबाल लपारा ने ख्वाहिशात इजहार कर दे वली दे चे तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सदर मुंतब की दल क्रिकेट फरोग लपारा खुशाइंदी मोहसिन नकवी उम्मीद जाहिर कर दे ची तमीम इकबाल पर मशीरा की बा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मुल्क के क्रिकेट फरोग लोबे बेहतर लपारा मौसर किरदार अदा कवी अव्वल बरहत कुमी हॉकी टीम बा सबा प्रो हॉकी लीग की शिरकत लपारा बेल्जियम तरवनेगी पाकिस्तान हॉकी टीम बा प्रो हॉकी लीग की शिरकत लपारा अखपल तिरानो तहतमी शक्ल वरकड़े दे कुमी स्क्वाड बा सबा बेल्जियम तरवनेगी कुमी टीम कप्तान इमाद भट्ट कल शविदे हेड कोच जिम्मेदारी मंजूर उल हसन तवरकड़ी शविदी कुमी टीम बा बेल्जियम स्पेन इंग्लैंड और भारत खिलाफ दो दो मैचों लुभवी मौसम हाल दो मौसमियात महकमे तर महातिर सलविश घंटों पर दौरान करक लकी मारवत बनो टांग खोश यात्रा इलाकों के मौसम उचो गर्म और जीन इलाकों के पासमान खाल खाल वरियजे दो मौसमियात महकमे लखवावली शविदेच करक लकी मारवत बनो टांग खोश सीम के बाद रतलून को सलिश घंटों पर दौरान मौसम उचो गर्मी दो मौसमियात महकमे तर महा करक लकी मारवत बनो टांग खोश सीम की नंजियात नंजियात दर्जे हरत यो सलविश डिग्री सेंटीग्रेड और कम न कम नवीश डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवे अवप हवा की दनामाई तनासब पर रस फीसद उदा हवा रफ्तार शपक किलोमीटर यू घंटा रिकॉर्ड करे शवे दे अवले देसरा करक लकी मारवत बनो टांग खोश सीम की बनवर सबाजा और शपक मिनट दपासा पिंज बजे सिरवाही अव महाम दिरिश्त मिनट दपासा व बजे बिवजी दऊद रेडियो अमानट सी अशर या चार नेटवर्क हम खबरों दोनों हम खबरों दलो दपार रेडियो अमानट सी अशर या चार करक टांगो बटाग्राम फेसबुक पेज लाइक उस न्यूज टीम सरा मातरा कड़े इजत दलु अल्लाह पामान।

0: 8:10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजायत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनारसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-93-63-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-26-48-435।